0: ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, मामा मामी, फुआ फुफा, बहन और ए भाई, तो भी सुने है तो उजाला रेडियो।

अज्ञान के अंधकार से मुक्ति देने वाला परम पिता परमेश्वर ही है। वही जगत का पालनहार है। आओ निर्मल मन से शरणागत होकर प्रार्थना करें, हे प्रभु हम भटके हुए प्राणियों को राह दिखाओ।

बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान राम, जानकी जी और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। रास्ते में नदी पार करनी थी। केवट पहले से ही अपनी नाव लिए खड़ा था। उसे मालूम था प्रभु आ रहे हैं, आज सेवा का अवसर मिलेगा और मेरे जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। प्रभु पहुंचे, केवट ने स्वागत किया। प्रभु ने कहा, केवट हम लोगों को उस पार उतार दो। केवट ने कहा, प्रभु आपका सेवक हूं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। प्रभु ने कहा, क्या शर्त है? केवट बोला, प्रभु पहले अनुमति दें, मैं आपके चरण पखार लूं। मैंने सुना है आपके चरण किसी पत्थर को लग गए

इसको कुछ हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। प्रभु मन ही मन मुस्कुराए, समझ गए केवट क्या चाहता है। अनुमति दी, केवट ने प्रभु के चरण पखारे, चरणामृत पिया और ले चला उस पार।

उतार दिया उस पार। प्रभु ने सोचा, केवट का तो यही काम है, यही व्यवसाय है, इसको मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन बनवासी राम देते क्या, कुछ था ही नहीं। सीता जी की ओर इशारा किया। सीता जी ने अपनी एक मुद्रिका उतार के केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। प्रभु ने कहा, ले लो केवट, ये तो तुम्हारा व्यवसाय है, तुम्हारी मजदूरी है। केवट ने कहा, प्रभु एक विशेष कारण है, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। प्रभु ने कहा, क्या कारण है? केवट बोला, प्रभु एक ही व्यवसाय करने वाले दो व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं करते। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा और केवट का व्यवसाय एक कैसे हो गया। केवट ने कहा, प्रभु है, और बोला,

प्रभु ने कहा ये तो ठीक है, नाई और धोबी का मामला है, मेरा तुम्हारा व्यवसाय एक कैसे हो गया। केवट ने कहा प्रभु है एक ही व्यवसाय है,

प्रभु एक ही व्यवसाय है, एक ही काम है। मैं भी नाविक हूं, आप भी नाविक हैं, थोड़ा सा फर्क है। मैं एक छोटी सी नदी का मल्ला हूं और आप इस

के घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net।

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल ना।

0: सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।
1: मुजस्सिम चांदनी हो तुम, अंधेरा है तो रहने दो मुझ

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Op de A28 bij Bezep is een touringcar door nog onbekende oorzaak over de kop geslagen en op de strook voor tegengesteld verkeer terechtgekomen. Uit groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en chemotherapie endelduimkanker zo effectief behandelen dat bij bijna 80% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. 5 Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. En de 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het ziekenhuis in Oslo vanwege een bloedziekte.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेयर इंफॉर्मेटिव उजाला .net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammad Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

या बादल पागल है दोनों खुल के बरसे भीगे आजरा या मेंसेस हैं वोल्के एं वार से कोमा बत्रेक्ट द लुख्त. फिल्म का नाम है एनिमल uit het jaar 2023 और गाना का नाम है पहले भी मैं met onder andere in de hoofdrol Ranbir Kapoor. En dit is Suno uit de film The Archies.

और तुम कितनी सुंदर हो। फिल्म मोहरा का गीत उजाला रेडियो पर आप सुने। Wilt u ons bellen, dan altijd tijdens kantooruren op het nummer 020 409 0807.

0: उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।
1: महफिलों के दामनों में साहिलों के आसपास ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास। और ये सदा किसकी सदा थी जो ये कहता हुआ चला गया कि तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। ये थे जनाब मुकेश साहब जिनके गाए हुए गाने आज तक ताज़ा और ज़िंदा हैं।

0: पापा की जिद के आगे हार गए। शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
1: ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें, प्यार छोटा नहीं है मेरा।

हैं बीन कोटरावर, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुनवालो तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस आई बिन कोटराव तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैथ उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनिए। अम्स्टरडम से लड़कन रामदीन और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हफ्ता सोमवार को 89 साल के आयु में निखन तख्त यार और स्वर्गीय पत्नी श्री कृष्ण कुमारी रामदीन पिल्टो का पति लड़कन रिकार्डो शोरली इवान हैंक और तेलमा रामदीन के पिता अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान अल्बर्ट योहान सिवदत रामदीन की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। बर्त के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम कमवैन रेंस डॉरप बाकी का रहने वाला था और उन दिनों वहां दुकान रामदीन का मालिक था। अम्स्टरडम से लड़कन रामदीन और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हफ्ता सोमवार को 89 साल की आयु में निखन तख्त यार औत स्वर्गीय पत्नी श्री कृष्ण कुमारी रामदीन पिल्टो का पति लड़कन रिकार्डो शोरली इवान हैंक और तेलमा रामदीन के पिता अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान अल्बर्ट योहान सिवदत रामदीन के मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। बर्त के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम कमवैन रेंस डॉरप बाकी का रहने वाला था और वहां दुकान रामदीन का मालिक था। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज सोमवार की रात में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक ओला जोयत के मुर्दालय फ्रेत रूस के स्त्रात 91 अम्स्टरडम जोयत में और अर्थी के दाह क्रिया कल मंगलवार के दिन में 1:30 बजे मोरखन दिनसदाक हल्फ त्वे किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-28-41-79-71 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार रामदीन के दुख में शामिल है।

Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, शूट योर ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: dichte stapelwolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं. 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो. स्टूडियो मेल नार info@ujala.net. info@ujala.net.

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

जाने ना तू अली खान। हाँ, अली खान की आवाज में आप सुने और ये उजाला रेडियो है। इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा उजाला.nl।

जाना, जिंदगी से नहीं जाना, कभी नहीं जाना, जाना तुम नहीं जाना। एंड उजाला रेडियो से दूर भी कभी नहीं जाना।

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: मुकेश जी की आवाज़ का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी आवाज़ की विशेषता कि वो जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत सच्चा ईमानदार भोला भाला आदमी गा रहा है, और हर गीत को ऐसे प्यार से गाते थे, लगता था कि उनके लिए ही बनाए गए। कभी लगता है कि राज कपूर जी मुकेश जी के लिए बने हैं, कभी लगता है कि मुकेश जी राज कपूर जी के लिए बने हैं।

ये था उजाला रेडियो पर बजने वाला गीत। उजाला रेडियो आप सुन सकते हैं हर एक दिन, हर एक रोज, सात दिन, 24 घंटे लगातार, ऑनलाइन ऑफ या डीएबी प्लस नीदरलैंड भर में।

उजाला रेडियो के जरिए भी हम प्रोग्राम मिलाने वाले हैं. आज का हेडलाइंस अभी आप सुन लेना समाचार. एंड ऑफ द मंथ फंदा खर इस हम ना बोल सकीला मार हम तो बाटी ना.

और ये है संजय जोधा ओक आवेश op Oejala's Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center.

0: छोरे
1: ना नाम उजाल के आवाज में भी आप सुन है कि नाचो मौसी नाचो उजाला रेडियो यहीं सुनो लो एंड कॉफी चाय मिला शो आपके वास्ते हम पेश कर हैं एंड आल्स एन बीच गेलुक हैव दन कम दी मंदर वेल और वandaag सो मदेन होइसके मैं आई बिलीव नहीं टोटी टाइट बेन ik er met jullie natuurlijk met nieuws समाचार और कुछ बातें

सुन वालों, ये उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम नाम सुनाने को जा रहे हैं आंस्टांड ज़ादा नेहनत्वेन एंड ज़ोंडक डेढ़ तक अगस्त को जबरदस्त हंगामेदार फेस्टिवल होने वाला है ब्राज़ा फेस्ट इंडोर समर एडिशन इंडोर हाँ तू मौसी सुन है भीतर जिया इवेंट सेंटर दिनाख में आप सुनने को जा रहे हैं नाम इस बार प्रोग्राम में ला रहे हैं अफीशा की आवाज़ में ओक अवेजक और ब्राज़ा फेस्ट

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनिए। आम्स्टरडम से लड़कन रामदीन और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हफ्ता सोमवार को 89 साल के आयु में निधन तख्त अख्तियार और स्वर्गीय पत्नी श्री कृष्ण कुमारी रामदीन पिल्टो का पति लड़कन रिकार्डो शोर्ली इवान हैंक और टेल्मा रामदीन के पिता आम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान अल्बर्ट योहान सिवदत रामदीन की मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है। बैरत के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम कमवैन रेंस डॉरप बाकी का रहने वाला था और उन दिनों वहां दुकान रामदीन का मालिक था। आम्स्टरडम से लड़कन रामदीन और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हफ्ता सोमवार को 89 साल की आयु में निधन तख्त अख्तियार और स्वर्गीय पत्नी श्री कृष्ण कुमारी रामदीन पिल्टो का पति लड़कन रिकार्डो शोर्ली इवान हैंक और टेल्मा रामदीन के पिता आम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान अल्बर्ट योहान सिवदत रामदीन के मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है। बैरत के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम कमवैन रेंस डॉरप बाकी का रहने वाला था और वहां दुकान रामदीन का मालिक था। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज सोमवार की रात में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक ओला जोयत के मुर्दालय फ्रेत रूस के स्त्रात 91 आम्स्टरडम जोयत में और अर्थी के दाह क्रिया कल मंगलवार के दिन में 1:30 बजे मोरखन दिनसदाक हल्फ त्वे किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 205 तक आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-28-41-91-71 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार रामदीन के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम और बाकी नीदरलैंड से सभी लड़कन राम अवतार और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 78 साल के आयु में अख्तन जीवन तक यार औत स्वर्गीय पति श्री सत्यनारायण प्रसाद की पत्नी सौरसीन भाइयों अंजनी गीता अनिल और भारती रामावतार के माँ सभी दामाद और पतों के सास और सभी लड़कन के नानी आजी परनानी और पर आजी अम्स्टर्डम जैतोस ददरेख्त की रहने वाली विधवा कमलावती रामावतार अवतार की मृत्यु हो गई है आईएमसी हॉस्पिटल में। इन्हें लोग कमला के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अम्स्टर्डम से पहले फ्रीसलांत लेमर के निवासी जो थी और उससे पहले सूरीनाम मेयरजोरख में रहती थी। अम्स्टर्डम और बाकी नीदरलैंड से सभी लड़कन राम अवतार और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 78 साल के आयु में अख्तन जीवन तक यार औत स्वर्गीय पति श्री सत्यनारायण प्रसाद की पत्नी लड़कन सौरसीन भाइयों अंजनी गीता अनिल और भारती राम अवतार के माँ सभी दामाद पतों के सास और सभी लड़कन के नानी आजी परनानी और पर आजी अम्स्टर्डम जैतोस ददरेख्त की रहने वाली विधवा कमलावती राम अवतार अवतार की मृत्यु आईएमसी हॉस्पिटल में हो गई है। इन्हें लोग कमला के नाम से पहचानते और पुकारते थे। पहले फ्रीसलांत लेमर की निवासी थी और उससे पहले सूरीनाम मेयरजोरख में रहती थी। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 11:30 बजे वंस दखास्तांद हल्फ 12 किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रिमेटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर उत्फार्ट फुर्जोर्किंग परिवार अवतार और परिवार राम अवतार के दुख में शामिल है।

0: और मृत्यु समाचार सुनिए। अम्स्टर्डम से परिवार कल्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शुक्रवार को 78 साल के आयु में अख्तन जीफन तक यार औत श्रीमती निर्मला कल्लू का पति लड़कन सुनीता और गायत्री कल्लू के पिता लड़कन के नाना अम्स्टर्डम न्यू स्लोटन का रहने वाला श्रीमान मनीराम कल्लू की मृत्यु अम्स्टर्डम के ओंजर लीफ फ्रावखास्टहुस वेस्ट में हो गई है। मनी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सुरीनाम में पहले इलाका कॉमोवेन डिस्ट्रिक्ट कॉमोवेन का रहने वाला था। अम्स्टर्डम से परिवार कल्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 78 साल के आयु में अख्तन जीफन तक यार औत श्रीमती निर्मला कल्लू का पति सुनीता और गायत्री कल्लू के पिता लड़कन के नाना अम्स्टर्डम न्यू स्लोटन का रहने वाला श्रीमान मनीराम कल्लू की मृत्यु ओंजर लीफ फ्रावखास्टहुस वेस्ट में हो गई है। मनी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सुरीनाम कॉमोवेन का रहने वाला जो था। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले बीफे के रात में 7 बजे से 8 बजे तक दोंदर दखाफन फन जेवन तोत अख्तूर उत्फार सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 4 बजे किए जाएंगे। फ्रेदा खान स्टांद फिर उर वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्ट फ्रजोरकिंग परिवार कल्लू के दुख में शामिल है।
1: तू जाने है तो

0: Uzan Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Uzan Radio.
1: Dokter ji, please ek baat sunti jaiye. Bas ek baat, dokter saab.
2: Kahiye.
1: Wo jo aapne mere liye dua ki thi na, zarur sacche dil se ki hogi. Bhagwan ne sun li hai aur mujhe ho gaya hai.
2: Kya ho gaya hai?
1: मुझे प्यार हो गया है।
2: अच्छा, मुबारक हो।
1: लेकिन आपने ये तो पूछा ही नहीं, किससे?
2: अरे हाँ, ये तो मैं पूछने भूल गई, किससे?
1: जी वो।
2: बोली बोली, कौन है वो खुशनसीब?
1: जी वो खुशनसीब आप ही हैं।
2: ओह, थैंक यू वेरी मच। माफ करना, मुझे कोई भूख नहीं।
1: सुनिए, ये भूख वाली मोहब्बत बिल्कुल नहीं है।
3: ओए चान जी।

जाते जाते ओ जरा जाते जाते जरा मुड़के तो देख कुड़िए, जाते जाते ओ जरा जाते।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

इतना करो ना मुझसे प्यार, ओ साथिया ये तूने क्या किया। एस चित्रा एंड एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मोहम्मद अजीज एंड साधना सरगम हिस्सा लेंगे। आपके आ जाने से हाँ

और सच मानिए कि दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। फिल्म खुद गर्ज का गीत आप सुने मोहम्मद अजीज एंड साधना सरगम से। ये उजाला रेडियो है।

फिल्म छाया, हाँ फिल्म छाया से गीत को आप सुने तलत महमूद एंड लता जी से, और ये उजाला रेडियो है। एक बार फिर लता जी हिस्सा ले रही है।

तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों लगता है मुझको डर, लता जी की आवाज और फिल्म असली नकली का गीत आप सुने।

0: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। मुकेश अंगलता जी, फिल्म फिर कब मिलोगी, स्टेशन उजाला रेडियो, तू जाने है तो।
1: जिसके तमन्ना में चिरता हूँ बेतरार।
2: You are.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk is de A59 knooppunt Zonzeel dicht tussen knooppunt Zonzeel en Made. Verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden over de A16, de A58 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Bijna zover. Yes, yes, yes. Brazzafest. Get ready to Tejaar Hoja for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Events in Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Doe ticket Grilina via brazzafest.nl. Dan ben je goedkoper uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tejaar Hoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brazzafest. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya, Londwakinaak, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Ja, daar ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, gurm, brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए.

प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अब यहाँ से हम अपना प्रोग्राम सबरंग शुरू करते हैं। सभी सुनने वालों को अदाब अर्श और नमस्कार। मैं हूँ आपका हम सफर निशा। अपने संगीत के खजाने से हमने सुनहरी दौर के नगमे चुने हैं, ऐसे नगमे जिसमें मीठी यादें जुड़ी है और शायद कुछ खट्टे भी। आप इत्मीनान से खूबसूरत एहसासों में इस प्रोग्राम से लुत्फ उठाइए। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में आंसू आ जाए तो उस रब से चुपके चुपके बातें कर लिया करे। वो सब जानता है लेकिन आपसे सुनना चाहता है।

प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको मजहबी और भक्ति गायन पेश किया। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम में हम गजलें सुनाने को जा रही हूँ। पहली गजल पेश है हरेंद्र खुराना की आवाज में। सुनाने से पहले एक शेर अर्ज है। फजा में महकती शाम हो तुम, प्यार में छलकता जाम हो तुम, सीने में छुपाए फिरते हैं हम यारे तुम्हारी, इसलिए इसलिए मेरी जिंदगी का दूसरा नाम हो तुम। मुझको दुआए दो, मुझको दुआए दो कि मैं दीवाना हो गया।

कि मैं दीवाना हो गया। हरिंद्र खुराना से आपने अभी ये गजल सुनी। मन महकता है किसकी खुशबू से, कौन रहता है फूल सा मुझ में, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं।

शहनशाह गजल नवाज मेहंदी हसन से पेश थी ये गजल। अगली गजल आइए सुने जगजीत सिंह की आवाज में। आंसू तब नहीं आते, आंसू तब नहीं आते जब आप किसी को खो देते हैं। आंसू तब आते हैं जब आप खुद को, जब आप खुद को खोकर किसी को पा नहीं सकते और वो किसी और के हो जाते हैं तो कितना दर्द होता है।

अभी आपने जगजीत सिंह से ये गजल सुनी। आज जब दर्द हुआ तो तेरा याद आया, मेरा प्यार में तुझे दर्द का एहसास तो जरूर हुआ होगा। बस एक दिल बता, बस एक दिल बता जो बिना दर्द के कभी मोहब्बत किया। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है।

0: है।
1: तलत महमूद और सुरैया की आवाजों में पेश थी ये गजल। कलाम था महान शायर मिर्जा गालिब का। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अभी आपने गजल सुनी। गजल एक ऐसी शैली है जिसमें शायर दिल की गहराई में डूब कर निखारते हैं। प्रोग्राम का रुख बदल देते हैं। अब हम आपको लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में ये दो गाना सुनाते हैं।

संगीतकार श्री रामचंद्र का संगीत और महान शायर राजेंद्र कृष्ण का लिखा तर्ज में पेश था ये नगमा। लता मंगेशकर से आइए सुने अगला गीत। पर ही है यूं तो किताबें हजारों, मगर हकीकत में जो सबक मिले हैं अपनी जिंदगी से मिले हैं, कोई कदर जाने ना।

फिल्म भाई भाई में से ये गीत पेश था। राजेंद्र कृष्ण का लिखा बोल और संगीत दिया है संगीतकार मदन मोहन। चलो फिर ढूंढ लेते हैं उसी नादान बचपन को, उन्हीं मासूम खुशियों को, उन्हीं रंगीन लम्हों को, जहां गम का पता न था, जहां दुख की समझ न थी, जहां बस मुस्कुराहट थी, बहारे ही बहारे थे, कि जब सावन बरसता था तो उस कागज की कश्ती को बनाना और फिर डुबो देना बहुत अच्छा सा लगता था, और इस दुनिया का हर चेहरा बहुत सच्चा सा लगता था। चलो फिर ढूंढ लेते हैं उसी नादान बचपन को, उसी मासूम खुशियों को, उन्हीं रंगीन लम्हों को।

बचपन याद आए, उन लम्हों की यादों में एक पल के लिए मुस्कुराए तो होंगे जरूर। शमशाद बेगम की आवाज में पेश था ये गीत। अगला गीत आइए सुने मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में।

फिल्म अंदाज में से ये दो गाना पेश था। ओपी नैयर का संगीत और कलाम था ज्ञान निसार अख्तर का। अब तो वही होगा जो दिल फरमाएगा, करीब आ जाओ कि जीना मुश्किल है तेरे बिन, अपनी नज़दीकियों से दूर ना कर मुझे।

चले हम कहाँ, हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाजों में पेश था ये दो गाना। हेमंत कुमार खुद संगीत दिया है और बोल था मजरू सुल्तानपुरी का। अगला गीत आइए सुने मोहम्मद रफी की आवाज में।

लव का मतलब है प्यार। प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, ये दूसरों के लिए गहरा लगाव या अपनापन का एहसास है। एक मोहब्बत करने वाला शख्स अपनी बातों और कामों से जाहिर करता है कि वो अपने चाहने वालों से कितना प्यार करता है, चाहे वो पास रहे चाहे दूर रहे, ख्यालों में रहते हैं।

फिल्म गीत गाया पत्थरों में से ये गीत लिया है। संगीतकार रामलाल का संगीत था और तर्ष हसरत जयपुरी का। मुझे एहसास है कि इस प्रोग्राम सबरंग सुनने के लिए हमारे कितने सुनने वाले बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में हल्के हल्के मीठी धुनों में नगमे सुनने को मिलते हैं, जैसे कि ये गीत।

आप सभी सुनने वालों को निशा फिल्मी दुनिया में इस्तकबाल करती है, स्वागत करती है। इस हिस्से के प्रोग्राम फिल्मी दुनिया में कोशिश है मेरी उन महान फनकारों के बारे में रोशनी डालने को, जिन्होंने अपने फन से हम सब के लिए खूबसूरत यादें छोड़ गए हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत से फिल्मी दुनिया की ऐतिहासिक किताबों में उनके नाम सुनहरी अक्षरों में चमकते हैं। आज से लेकर कुछ प्रोग्रामों में हम एक ऐसे ही महान शख्सियत के बारे में बयां करेंगे। आप शायद सुने होंगे कि 16 जनवरी को महान संगीतकार ओपी नैयर की पैदाइश का दिन याद किया जाता है। ओपी नैयर अब हमारे बीच नहीं रहा, पर वो हम सब संगीत प्रेमियों के लिए अनमोल खजाने छोड़ गए हैं। इस महान संगीतकार, जिसका पूरा नाम ओमकर प्रसाद नैयर था, कोशिश करेंगे उनके संगीत सफर पर तवज्जो डालने को और जरा सा उनकी निजी जिंदगी पर एक नजर डालने को। उनके सजाए हुए संगीत और गाने में वही ताजगी, वही लोकप्रियता है जैसे 40 और 50 साल पहले था। कैसे हम भूल सकते ओपी नैयर की सजाए संगीत फिल्मों में, जैसे आर पार, हावड़ा ब्रिज, एक मुसाफिर एक हसीना, मेरे सनम, कश्मीर की कली। प्रोग्राम के दौरान हम आपको एक के बाद एक लाजवाब, दिल छू लेने वाले नगमे सुनाएंगे। ओपी नैयर की संगीत में कुछ खासियत है, एक अलग सी पहचान है जो आज तक पसंद की जाती है।

शमशाद बेगम। आज हम ओपन नैयर की बचपन के बारे में बातें करेंगे। कैसे थी उनका बचपन? बचपन से ओपन नैयर मतलब ओमकर प्रसाद का सपना था एक महान संगीतकार बनने को। उन्होंने एक्टर बनने के भी सोच रखा था, पर उनका बाप नैयर ये देखना चाहते थे कि ओमकर प्रसाद एक दिन पढ़कर बड़ा आदमी बनेगा। 10 और 17 साल के दरमियान पढ़ाई किया, पर साथ ही साथ ओमकर प्रसाद संगीत में भी वक्त बिताते थे। जैसे मैंने कहा, उन्होंने संगीत की दुनिया में नाम कमाना चाहते थे ताकि दुनिया उसे संगीतकार के रूप में इज्जत करे। स्कूल जाने के लिए उसे जब पैसा मिलता था तो ओमकर खाने पीने में पैसा उड़ा देता था और दुकानों में जहां संगीत बजते थे वहां दिन गुजारते थे। एक दिन जब उनका वालिद सवाल किया कि बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, तो बेटा बेफिक्र होकर अपने वालिद से कहा कि वो स्कूल जाना छोड़ दिया क्योंकि पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता है। पढ़ाई में इतना बेपरवाही बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ। नैयर अपने आप को नहीं संभाल पाया। वो अपने बेटा ओमकर को जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि तुम सिर्फ हारमोनियम बजाने के लायक होगे, आगे क्या होगा हम आपको एक गीत के बाद सुनाएंगे।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले से आपने अभी ये गीत सुना। फिल्म फागुन का गीत था, इसमें ओपी नैयर ने संगीत दिया। इस गीत से पहले आपने सुना कि ओमकर प्रसाद का वालिद नैयर अपने बेटा पर नाराज़ था क्योंकि वो स्कूल जाना नहीं पसंद करते थे। उसे एक्टर बनने का शौक था या संगीतकार बनने का। बाप की थप्पर से ओमकर प्रसाद को संगीत की दुनिया में कदम रखने को और मजबूत कर दिया, पर कैसे ये आसान नहीं था। ओमकर प्रसाद कोशिश किया संत शायर कबीर का दो टुकड़ा कबीर वाणी सजाने और खुद गाने के लिए, साथ में दो और पंजाबी गीत गाए, पर अवाम इसे पसंद नहीं किया। ये एहसास कि अवाम इसे नहीं पसंद किया, वो हिम्मत नहीं हारा। ओमकर प्रसाद अब एक स्टूडियो से दूसरी स्टूडियो की दरवाजे पर दस्तक दिया, पर काम के लिए जो काम उसे मिल जाता उसे सब मंजूर था, पर बार बार मायूस होकर घर लौटना पड़ता था। संगीत की दुनिया में कब और कैसे कदम रखा, सुनाते हैं एक गीत के बाद।

हर टुकड़ा मेरे दिल का देता है दुहाई। फिल्म ये रात फिर ना आएगी का गीत था। ओमकर प्रसाद का दोस्त फिर उसे एक दिन सलाह दिया पेशकश पंचोली से मिलने को। पंचोली फिल्म कंपनी का मालिक था और कई फिल्म रिलीज कर चुके थे। फिल्में जैसे खजांची, खानदान और फिल्म शिरीन फरहाद। बड़ी हिम्मत के साथ ओमकर कदम उठाया पंचोली से मिलने को, पर वहां का फिल्मी माहौल देखकर ओमकर प्रसाद की हिम्मत पानी पानी हो गई। इतना बड़ा फिल्म कंपनी का मालिक पंचोली साहब कैसे उनका सामना करता। ओमकर का दिन अब उदासी में गुजरता था। जोश व जज्बे की कमी की वजह से डिप्रेसिव की हालात में एक गीत सजाए, और वो कौन सा गीत था आइए सुनें।

प्रीतम आन मिलो। जी हाँ, इस गीत को सजाने वाले थे ओमकर प्रसाद, जिसे बाद में ओपी नैयर के नाम से मकबूल हुआ। इस सजाई हुई गीत से ओमकर की कामयाबी की शुरुआत थी, पर बड़ा रकम उसे नहीं सीएच आत्मा को दिया गया। अब बात ये थी कि जब फिल्म कंपनी का मालिक पंचोली ये गीत सुना तो वो बेताब थे उस शख्स से मिलने को। मिलने के बाद पंचोली ने फैसला किया ओमकर प्रसाद और सीएच आत्मा को अपने नई फिल्म के लिए, पर हालात ऐसा होने नहीं दिया। पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा इन सब को बिछड़ने पर मजबूर कर दिया। कहानी दिलचस्प है, एक गीत के बाद हम बातें आगे बढ़ाएंगे।

गीता दत्त से आपने अभी ये गीत सुना। पंचोली अपना कारोबार छोड़कर इंडिया जाने का फैसला किया और परिवार नैयर भी लाहौर से इंडिया चले गए, पर ओमकर प्रसाद अपने परिवार के साथ जाने से इनकार कर दिया। अब हालात इतनी बिगड़ने लगी थी कि वो भी नेहतीन सेफन फेतह में लाहौर से अलविदा लिया और अमृतसर अपने रिश्तेदार के पास चले गए। अमृतसर में डर बदर ओमकर काम ढूंढा तो उसे पटियाला स्कूल में बच्चों को संगीत सिखाने का मौका मिला। इसी तरह कई जगह वो संगीत सिखाते थे पर उसे सुकून नहीं मिलता था, क्योंकि संगीत की दुनिया में ओमकर प्रसाद बड़े बड़े सपने सजाए थे और इस सपना पूरा करने के लिए उसे अमृतसर छोड़कर बॉम्बे जाना होगा। तो इसी तरह ओमकर प्रसाद रेलगाड़ी का टिकट लिया और रेलगाड़ी से बॉम्बे चले गए अपना तकदीर आजमाने। बॉम्बे में कितना मुश्किलात का सामना किया हम आपको अगले प्रोग्राम में इत्तला करेंगे।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हम महान संगीतकार ओपी नैयर का संगीत सफर के बारे में बयान किया। प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं।

मोरे राजा हो ले चलो नदिया के पार, सदा बहार गीत था। इस गीत के साथ आप जरूर गुनगुनाए होंगे। गीत है ही इतना खूबसूरत। आइए सुने अगला गीत।

शंकर जयकिशन का संगीत और शैलेंद्र का गीत रचना था। गायिका थी लता मंगेशकर। तुम थे तो कहीं वक्त ठहरता नहीं था, अब वक्त गुजरने में बहुत वक्त लगता है, बस इतना ही कहना था।

किशोर कुमार से आपने अभी ये नगमा सुना, राहुल देव बर्मन का संगीत और राजेंद्र कृष्णा का लिखा तर्ज। अगला गीत आइए सुने मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में।

शैलेंद्र का गीत और शंकर जयकिशन का संगीत था। आवाजें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की। प्यार भरा डो गाना आइए सुने मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में।

हसरत जयपुरी का गीत रचना और शंकर जयकिशन का संगीत रचना में पेश था ये दो गाना। इसी अंदाज में आइए सुने अगला गीत हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

0: तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, फिल्म सत्ता बाजार का नगमा था। गाने वाले थे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार, संगीत देने वाले थे।
1: Vanuit de hoofdstad.
2: कोर्ट रावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

ये उजाला रेडियो है। अब यहाँ से सबरंग प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा पेश करने को जा रही हूँ। आप सभी को एक बार फिर प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रूह को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना।

हाँ दीवाना हूँ मैं इस खूबसूरत दिल छू लेने वाले तर्स भारत व्यास दिल के कलम से लिखे हैं। सरदार मल्लिक का संगीत था और मुकेश अपनी आवाज से इस गीत में चार चांद लगाए हैं। ऐसी आवाज कहाँ है अब, तो लीजिए एक बार फिर मुकेश से आइए सुने अगला गीत और इससे लुत्फ उठाइए।

फिल्म माय लव से आपने अभी ये नगमा सुना। जिसने अदा सीख ली, जिसने अदा सीख ली गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएगी, उसे क्या मिटाएगी गर्दिशे जमाने की।

सदाबहार गीत, संगीतकार उपेन नैयर का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी का गीत। आवाज थी गीता दत्त की। एक बार फिर आइए गीता दत्त से अगला गीत सुनें।

खूबसूरत आवाज में और ना भूलने वाले गीत आपने अभी गीता दत्त से सुना। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं मोहम्मद रफी के गाए हुए गीत से।

आएगी का नगमा था, ओपेनहेयर का संगीत और अनजान का लिखा तर्स। उसकी आवाज सुन लो, उसकी आवाज सुन लो तो मिल जाता है सुकून दिल को। देखो तो सही मेरे दर्द का इलाज कैसा है, सुकून ही सुकून है, खुशी ही खुशी है।

गीत आपने अभी मोहम्मद रफ़ी से सुना। कभी कभी कभी कभी इंसान इतना बेबस हो जाता है कि रो भी नहीं सकता और शिकायत भी नहीं।

सुनहरे दौर की सदाबहार नगमा आपने अभी लता मंगेशकर की सुरीली आवाज में सुना। अगला गीत आइए सुने एक बार फिर लता मंगेशकर की आवाज में, और इस बार साथ दे रहे हैं मुकेश।

महबूब मेरे, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में आपने भी ये दो गाना सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और गीत मजरू सुल्तानपुरी का था।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये नगमा। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम सबरंग से लुत्फ उठा रहे हैं। रोमानी अंदाज में आइए सुने ये गीत और इसे महसूस कीजिए।

0: आज की रात नहीं शिकवे शिकायत के लिए। कमाल का ये नगमा था और लाजवाब महेंद्र कपूर की आवाज। ऐसी ही रोमानी अंदाज में पेश है ये दो गाना।
1: मुस्कुरा

प्यार भरा दो गाना पेश था। गाने वाले थे हेमंत कुमार और लता मंगेशकर। लता मंगेशकर से आइए सुने अगला गीत।

लता मंगेशकर से आपने भी ये खूबसूरत नगमा सुना। प्रोग्राम में आखिरी गीत आइए सुने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में।

और इस गीत के साथ हम इजाजत चाहते हैं जिन्होंने आराम से इस प्रोग्राम से लुत्फ उठाए हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार। खादिमाती निशा।

भैया सिपाही की दिल्ली के कैब ड्राइवर आज की रात इकट्ठे गुजारे। सिपाहियों को वो थीम सॉन्ग याद नहीं, आज गालो मुस्कुरालो महफिलें सजालो, कौन जाने कल कोई साथी छूट जाए।

डॉलर रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे, सबको इसे बताते हैं। ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।